0: के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है
1: के सर्वत्र. Okay, he says drop dead, i.e. cover yourself in the

चतत को थनरचियो जन हो चतुर सुजान जेते उपजियो नानिका लीन तये में मान गट गट में हर जूब से संतन कहियो पुकार कहो नानक ते भजमना बोनित उतरे पार सुख दुख जय पार।

करत राम पहचान कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान बेम नासन दुर मत हरन काल में हर को नाम निस दिन जो नानक भजे सफल होए अथे काम जय बागुन गोबिंद पचो

बिन हर भजन जीवन को ने काम प्राणी राम न चैतही मत माया के अंत कहो नानक हर भजन बिन भारत ताहे जम फंद सुख में पो संगी भय दुख में संग न कोई कहो नानक हर भजमना अंत सहाय होय जन्म जन्म भर मत फिरियो मृत्यु न जम को त्रास कहो नानक हर भजमना निर्भय पावे पास जतन बहुत में कर रहियो मृत्यु न मन को माना दूर मत स्यो नानक फतियो राख ले भगवान बल जुआनी और पीरित फून तीन अस्वता जान कहो नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान करनो हो तो सोना कियो पारियो लोभ के फंद नानक समयो राम गयो अब क्यो रोवत अंद मन माया में राम रहियो निकसत नाही नमीत नानक मूर्त छत्र जियो शारदित नाही न भीत नर रह चाहत खच और है की और है भई चित्तवत रहियो टागोर नानक वासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोय कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होय जगत भिखारी फिरत है

खाखरे जग सपने ज्यो जान इन में खच थे ओ नाही नानक कहियो बखान गर्भ करत है देखो बिन से छीन में मीत जय प्राणी हर जस कहियो नानक थे जग जीत जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्त जान दे नर हर अंतर नाही नानक सची मान एक भगत भगवान जय